अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गांव हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्नि शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे।

फिर केस धार गए खड़द को सब दुष्ट पसारा सील जत की कच्छ पैर पकड़ो हथियार।

मूर्ख दुष्ट सब शय किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो, शहादत के लिए उन सरफरोशों की जरूरत है कि जिनके खून की एक बूंद में जोश अमीयत है। उठो है गुरु।

गुरु कृपा ने जाता अंदर मुका दतिया ध्यान दो जे ध्यान दो जे एक जट लिया एक खत्री लिया एक चीवर लिया एक चीम्बा लिया एक नाई लिया ते सारिया नु इको बाटे विच पलाया ते आखिया ओ खालसा।

कमाल दियां गल्लां कहीं कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन नै लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनियां कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

तीन चीजा इको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा इको जिया इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

मन च यह भावना बनाउणी है कि ए प्रसाद मेरे गुरु दे दर दे उत्ते जाना, ए प्रसाद गुरु दे दर ते जाना, ए प्रसाद गुरु कीआं संगतां च वरतना। ते कहिंदे जदों बनाउणा है जां ते जपजी दा पाठ जवानी, जे नहीं आउंदा ते वाहिगुरू वाहिगुरू जपे किवें।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर न होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहते ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी अपने मन में लै

अपने सह दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रथे गए भाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिया नूं चंगे लगते ने। क्यों जो हर का प्यारा सो सबना

हाँ तिन बलिहारी जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारी जाऊं मैं उन्हां तों बलिहार जाना।

बस है अभियान नाल शब्द जदों ही आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे आंदे नाल वसदा है ओदी निगाह तों कोई

दिखा दिहाया क्यों लहे जा सर पी दरबार। कुछ सरोवर आपां बाहर धरती ते देखते हैं पर एक अमृत का सरोवर इंसान के अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है वो तिहाया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी ओदे नाम रूपी अमृत विच इशनान करन दी।

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कुल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो गए, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, ये जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती उदों तक इंसान दुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे हौमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और हौमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा ढंडोरा दुनिया नूं दे रहा तां कि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे हैं। बेबे नानकी वेड़े विच दाखिल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, सीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, तीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्हूं भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे जा।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लम्मे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल चुम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनूं उड़ीकदे हां तैनूं बड़ा मैं झिड़किया तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पा लै आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रखदी है। सैब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नूं मिलो बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नूं मिल के बेबे नानकी जी नूं मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तों थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकदा सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं जिहदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसे गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखने है। ओ पति भी ने पुत्र भी ने ओ भरा भी ने ओ सज्जन मित्र भी ने ओ गुरु भी ने ओ पीर भी ने ओना ने दुनिया नू प्यार वंडिया है। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं। ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

महूरत देख के कर दे। कर बनाना होवे कर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ए इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखण देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखण देता, ना तरीक देखण देती, ना कोई महीना देखण देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नु मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारू डीकते पए ने, आ जाणगे शाम नूं मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे आ हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच हुक्म आया मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े, जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिलक जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राजभाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बन के कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतों के बारे साहब जी कहते नहीं तेन क्यों रहन विहानी उन्हों दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

सारा संसार सौंदा है, पर मैं किवें सौवां। हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है, पर तू तो विच ही साथ छड़ गया। तू नहीं ता साहब जी कहते ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगता है, ते ओ मां जिदा पुत ना रवे उदा जीवन कैसा। कहंदे ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर, अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया। दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है, तू हिंदुस्तान दा बादशाह है, जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह। अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद करदी सलाम करदी, तुसी क्यों रोंदे। अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने, पर इको ही सी मेरी मां जेड़ी क्या करदी सी वे अकबरा। हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी, क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी। जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है वो दुनिया दी

कर दिंदी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको। ए हुक्म सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है।

मैं जिनू चाहवा ओनू मार सकदा, जिनू चाहवा ओनू छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे नी दुनिया दे हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है, पर उदे

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हार्यो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पया पद निर्वाणी।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शन दार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो राग दी बंदिशां जरूर सरवण करा हन आओ इस तो पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करो।